चेतन होती खाक में मारी गौर करे चेतन होती खाक निमाणी गौर करे अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजणिया अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजणिया मनो मचंदणिया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

बुढ़ा हो से फरीद कमल लगी दे, बुढ़ा हो से फरीद कंबल लगी दे, जिस वरिया जीवना पीता।

गगा गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत काम सासा देता बिल मना करियो मीत।

चलने चलना हार बिचारा ले मनो, चलने चलना हार बिचारा ले मनो। गंढेंदिया छे मार तोड़ेंदिया चिट्ठीनो, जिमें पुछे आसमान हरिदा केवट।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछ न सूझे कैद कबीर सुनोरे प्राणी कैद कबीर सुनोरे प्राणी छोड़ो।

समझ अचेत चेत मन मेरे, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथे संतन अकथ कहानी, लाभ लियो हर हृदय अरादो, सबके आऊ जानी, जीव तो व्यवहार है जको तू जानो।

एक शायर ने बड़ी सुंदर बात आखी है। ओ आंदे ने सरे जलसा गोविंद ने तकरीर फरमाई, ये वो एक तकरीर थी जिसमें इनकलाबों की थी अंगड़ाई। गुरुजी ने कहा है दे गुलामी रह नहीं सकता, मुजालम के थपेड़े ये वतन अब सह नहीं सकता। यहाँ है जात के झगड़े, यहाँ मजहब के झगड़े हैं, ये सब मतलब की बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत लिख के लिए उन

सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा।

या संगत विच जेड़ा आ जांदा है उतर जांदा है, जेड़ा संगत करदा है उसका पार उतारा हो जांदा है। संगत आप भी संगत कर रहे, संगत कई प्रकार दी, पर जेड़ी संगत आप कर रहे हो साहबा ने इसनू साध संगत करके आखे उत्तम करके के श्रेष्ठ पावन पवित्र करके के कि संगत साध संगत भाव सत दे नाल जुड़ना साध संगत जिथे सत एक अकाल पुरख की आराधना हो रही होवे उसनू आखदे ने साध संगत ते संगत किनू कहिंदे ने।

सज्जन हर सज्जन प्रगटे आए। फगन दे महीने च आनंद पैदा हो गया क्योंकि हरी सज्जन हिरदे विच प्रगट हो आए। जिन्हां नूं लभदा सां पिया उन्हां दे दर्शन हो गए। ये किवें मिले ने सहायता किन्ना कीती संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए। राम दे संत सहाई होए उहदे भगतां सहायता कीती कृपा करके मला दिता। इस पुन्नी वड भागनी वर पाया हर राय। वड्डे भागां वाली जीव स्त्री की इच्छा पूरी हो गई हरी राय वर पा लिया। जदों कोई बच्ची जवान हुंदी है ना जदों जवानी आउंदी ते इच्छा लाजमी जागदी है कि नमकार कोई वर चंगा दे। ये वखरी गल है ओ मुंह तो कहे या चुप दी बोली च कहे वर चंगा दे जीवन सुख नाल बतीत हो गए। भगत भी जेड़े ने ओ कहंदे ने हे परमात्मा मेरे वास्ते वर तू ही बन। जिवें कोई नेक बच्ची सहुरे घर गई सन्मान मिलिया वर चंगा मिलिया। भगतां ने बंदगी कीती ते उन्हां नूं परमात्मा मिल गया। इच पुन्नी वड भागनी वर पाया हर राय। मिल सईयां मंगल गावई गीत गोविंद आला। एक बच्ची दा विआह होवे ना उमरा एवें बीत जाए ते किस नजर नल तकने और किन्नी दुख ते पीड़ा उसते जीवन विच होवे कि उसनूं वर मिल ही नहीं सकिया। पर संसार ते ऐसा बहुत घट है। गरीब दी गरीब बच्ची नूं भी वर मिल जांदा है पर जिस वर दा मैं जिक्र कर रहा कई जन्म जीव दे लंघ जांदे ने वर लभदा ही नहीं। आप सतन नहीं वर मिलता। परमात्मा तो विहूणा जन्मदा मरदा फिर जन्मदा फिर मरदा। मिल सईयां मंगल गावई गीत गोविंद आलाए। सत संगी इहदे च सहायता करदे ने। इस कर्म विच मिल के गोविंद दे गीत गाउंदे ने मंगल सईयां मिल के गा रहीआं ने। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। रब वर्गा होर कोई दूजा उसकी बराबरता नहीं कर सकता। हलत पलत सवारियां नेचल दित्तियां न जा। उन्हें नेचल खां देती थी लोक परलोक सवार दिता। हलत पलत सवारियां नेचल दित्तियां न जाए। संसार सागर ते रखियां बहुण न जन्मे ता। संसार सागर तो रख लिया बचा लिया जन्म मरण विच नहीं हुण आउणा। ए गेड़े मुक गए। संसार सागर ते रखें बहुण न जन्मे ताए। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। जुबान साड़ी एक है ते गुण परमात्मा तेरे अनेक ने। तेरे चरनी जेड़े पै गए उतर गए। फल गुण नित सलाई है जिसनों तिल न तमाए। उसकी नित सिफत करनी चाहिए है जिसनों तिल जिन्ना तमा। संसार दे दाते देंदे थोड़ा ने मंगदे ज्यादा। इथे ते ऐसा है कि दान जेड़ा सुई दा ते चोरी है रंदी। इन्ना फर्क महापुरुखां दसे। कहंदे ने परमात्मा नूं तिल जिन्ना तमा नहीं जो देंदा फिर नवां ही देंदा। आपने कदी ख्याल कीता होवेगा एक दे चेहरे नाल दूसरा नहीं रलदा। जो एक बार बना दिता दोबारा नहीं बनाउंदा। तुहानू एक वार वर्गा बंदा दूसरा लभना मुश्किल होवेगा। बंदा ते किते रहा एक पत्ते वर्गा पत्ता दरखत दा लभना मुश्किल हो जाएगा। उहदी टकसाल चो जो एक वारी बन गया दोबारा नहीं बनता। दोबारा नवा ही बनता है। एडा वड्डा वह दाता है। उस दाते दियां दाता की गिणीए। बड़ी महान उसने बख्शिश की। आओ एक बार गल नूं दोहरा दें ते समाप्ति कर। सब तो वड्डी मेहर उसने की जिहड़ा सानू मनुखा जन्म बख्शी। फिर उस तो बाद कृपा उसने की कि सतसंगत की दात तुहानू बख्शी है। फिर बड़ा सीधा मार्ग सिखी का बख्शिया जिस विच कोई गोरख धंधा नहीं। नंकार ने तुहाडे ते किन्नी मेहर की किन्नी बख्शिश की है। तुहानू श्री गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया। फिर आप कमाई करनी है। आप कमाई करो। बाणी का आप रस मानो। गुरु का सिख किसी का गुलाम नहीं। बड़ा स्वतंत्र गुरदेव ने बनाए। इथे कहण वाले ते सुनन वाले सारे दे सारे बराबर ने। कोई इथे प्रोत नहीं। कोई इथे कोई होर बंदा वखरा गुरु नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी ताबिया विच सुनन वाले कहण वाले सारे बैठते ने। गुरुदेव ने बड़ी मेहर साडे ते कीती है। जे उसकी मेहर नाल अपने आपे नूं पड़चोलीए अपनी अवस्था नूं वेखीए कि मेरी अवस्था हुण कलयुग दी है कि सतयुग दी है। मेरी अवस्था हुण इस वेले केड़ी है। मैं आनंद पाउण वास्ते जगत विच आया। कदी उस आनंद दा कोई रस मिले है कोई दस मिली है
कदी उस आनंद नाल कोई वाह पिया के नहीं, कदी वह आनंद आया के नहीं, एक गल होर ध्यान च लै लैनी, इस नाल समाप्ति है। झूठा आनंद जदों आएगा ना उस तो बाद दुख आ जाएगा, पर सच्चा आनंद जिस दिन आ गया फिर वह आनंद रहना ही आनंद है, फिर दुख हो ही नहीं सकता। वाहिगुरु बख्शिश करे, कृपा करे, ए गुरमतियां पौड़ियां बाणी दियां पौड़ियां चढ़ के आनंद दे घर तक पहुंच सकीए। इन्ने शब्द या जे आपने प्रवान कर लें, भुलां दी खिमा गुरु पातशाह दी मत अनुसार कुछ सुन

आप मुहे नाच नो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पावन शब्द सरवण कीता है। आओ एक जो के ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमस साहब जी दी बहुत ही सुंदर रचना जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन कीती है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करते सन वो रचना संगत विच जरूर सुनाते सन, ते बड़ी कठिन है। आप जी उहदी लिखतकारी ते बंदिश दी बनावट आओ अड़ाना बहार दी बंदिश है श्रवण करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ए आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असा ने गाई है, तो ध्यान देना ए दी रचना पहला आप श्रवण करो बोल जो बड़े औखे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंपयो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इस उन्होंने कंपोजिशन बनया है, ध्यान देना। इस चीज इन्नी औखी पढ़न औखी है, पर इस उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है, ध्यान सरवण करना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंपयो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो, कंपयो तरणी तर, कंपयो तरणी तर धरती कंब गई, कंपयो तरणी तर थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी, धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आनंदपुर जय जयकार हो रही है, सारे पासे तुम पै गई, इंद्र का दरबार ते वड्डे वड्डे भीम जेड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शिफ तो स्नान देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। तो अगला पहरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह किस तरह चलते ने, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर, छतियां चीर दुष्ट सबन के तरफ तरफ निकसे प्राण, धागे रघुबीर महावीर रण तीर की गिरत पगरी, धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चकर चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपकत बर महा जोध दुष्ट दमन करे। चक्कर न्यांग सिंह धमाले ते चक्कर पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों उह आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्कर चलत खंड खंड चक्कर चल रहे ने, चक्कर चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपकत बर महा जोध दुष्ट दमन करे, गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी, डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्या दी पुरियां हैरान हो गईयां ते डरन लग पईयां आनंदपुरी नूं देख के, ते ओ ए रचना बड़े आनंद दे नाल प्यार दे नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमस्त साहब जी दी रचना।

गुरु जी बड़े मर्द मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पारसा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे, गाजी थे, दलावर थे, वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाहरे खुदा, ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, ए जदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले, मसतीले दो जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद साहब मरगिंद की तरह शेर की तरह, सतगुरु पातशाह जी कभी भी रण मैदान में हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित हुए। तो सत संगत जी, औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जिहड़े सत श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सत श्री अकाल दे, इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आप लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, तो कृपा करो कि आप एक भोरा पुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा देंदे हाँ। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आप एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आप आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी वजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पए, कहिंदे ने तुसां ते ये मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शर्मन करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी की आवाज ना पवे, नगारा मर दो। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डन। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसी भोरे की गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे का जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब का यह लोहगढ़ का किला है, ये आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सत संगत जी सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, ये जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगे तां पता लगेगा। तो सत श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उच्चारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी दिम धरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी ब्रिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, इहदे विच विचित्र वीणा ते सितार दे

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने। तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे पे खारी जियो मैं क्या मांगू किच थिर न रहाई। तू दाता है तेरे कोल सारिया दाता ने तू दाता दा मुजस्मा है पर सोचना ता मैं है पई मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे।

नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

खट खट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी ज़ियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उत्थे मिल जावे। कबीर हज काबे हों जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले हैं? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए, मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है, तेरी भी मारी गई।

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पाती बिशन डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर

एक गल याद रखियो, गुरु ते उहदे दरगाही प्यारे ये तुर तो ही ड्यूटी लगी हुई, प्रोग्राम बनिया हुंदा तुर तो, संसार ते केड़ी ड्यूटी जाके देनी है, ये ड्यूटी सी तू दो तो एक बना रहे हैं, दो तो तीन बनने, क्यों तीस सरपंच चलाई हैं, वड़ सूर गए, सारे बोलो वाह वाह गोविंद सिंह आपे। ये प्रोग्राम नूं कोई साढ़े वर्गी मत क्या जाने,

इस पावन पवित्र शब्द अंदर साहेब श्री गुरु नानक पातशाह मन नू संबोधन करदे होए सानू कलयुगी जीवां नू उपदेश देंदे ने। एक चेतावनी एक चेतना देंदे ने, हे पुल्ले मनुख, जिस दी चेतना जिस दी आराधना करन वास्ते तेनू संसार विच भेजे है तो उसनू क्यों भुला दिता है। पर अज दा मनुख ए गल मनन नू तैयार नहीं कि मैनू कुछ भुल गया है। कहिंदा मैनू सब कुछ चेते है, मैनू सब कुछ याद है। साहब कहिंदे ने नहीं, एक गल तू भुल गया है, मैं तेनू चेता कराना चाहना। मन एक ना चेतस मूड मना, मूड कहिंदे ने मुगद मूर्ख मन नू। हे मूर्ख मन, तू एक परमात्मा नू चेतदा नहीं, ओदी आराधना नहीं करदा। याद रखी, मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जे तू हरि वाहिगुरु नू विसार देवेंगा, तेरे अंदर दे गुण एक एक करके सारे गल जानगे, सारे सड़ जानगे, मुक जानगे। इसलिए तू परमात्मा नू चेते करिया कर।

आप श्रवण कर रहे सो कि धन गुरु नानक पातशाह नु जिस वेले पांधे ने पढ़ाया गुरु नानक ने पढ़िया लेखा समझाया पर गुरु नानक ने जिस लेखे दी गल कीती हुण पांधा हैरान हो गया कह लगा पातशाह मैं ते सवाए पौण डेढ़ जा जमीन जा लकड़ दे साब लेखे नू केवल जानना इस तो सवा मैनू होर लेखा कोई नहीं आंदा बाबा जी कहन लगे पंडित जी ए लेखा इत्थे ही रह जाना मैं उस लेखे दी गल करना जेड़ा लेखा साडे नाल जाना है बाबा ए लेखा लिख जान ओ लेखा लिख जिड़ा तेरे नाल जाना है फिर कहिंदे ने इत्थे पांधा जी ने गुरु नानक नू पूर्ण शक्ति मन के कुछ सवाल कीते कहन लगे बाबा जी हुण ए दसो कि मौत ज्ञानी दी भी हुंदी है ते मौत अज्ञानी दी भी हुंदी है दोनों मरदे ने सतगुर कहन लगे पंडित जी इस गल दी विचार ना करो मौत वाकई ही दोनों दी हुंदी है लेकिन अज्ञानी दी मौत ऐसी है जिदी मौत दे अंदर शौक चिंता वाशनामा ते कुकर्म लैके मरदा है ते ज्ञानी जिसनू जम दा डर नहीं हुंदा परमात्मा नू अंग संग जानदा है ओदे रंग विच सदा खुश रहिंदा है ते जिस वेले ओ मरदा है ओनू दरगाह विच मान ते वड्याई हासिल हुंदी है पातशाह ज्ञानी ते अज्ञानी विच अंतर की है कहिंदे ने अज्ञानी जो परमात्मा नू भुल जांदा है परमात्मा दा चेतन नहीं करदा ते ज्ञानी जिहड़ा परमात्मा नू याद रखदा है परमात्मा नू हर दम

इस मूर्ख मन नु गुरु नानक पातशाह ने बारंबार समझाया, बारंबार उपदेश दिता है, ते उपदेश देंदे होए सतगुरु जी ए सानू गल समझांदे ने। सो साध संगत आओ, जे किते मन समझदा है

कौन नहीं होवेगा। ते भाई जे गुरु नानक दे सिख हां, आओ गुरु नानक दा बचन मनिए। गुरु नानक दा बचन मनना, क्योंकि राय बुलार ने आख्या सी कालू जी गुरु नानक ता ऐसा रैबर है, ये तेरे घर आया है, ये तेरे घर आया है। ते साध संगत राय बुलार कह लगा गुरु नानक दे जो मन करके चरण परसेगा वो इस कलयुग दे भाव सागर तो पार हो जाएगा। सारे आखो जी।

पद्मौली गरिया बधन हे मन मोरिया कुम धारो मुगद मना पाओ मेरे मना इस मन मौलिया मन पयाया अमृत फल पाया हे कोई भव आधारे हुक्म बुझे कैलन को न कैलन कोई Yeah, man,